0: And that ball comes in with Young. And the batter was so clever. Matthews off the back foot plays it down into back foot point. The ball hits the fence. Four runs. संजय, व्हाट अ शॉट!
1: कमाल के स्ट्रोक्स, और जो भी स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो विकेट के पीछे, आमतौर पर हम देख रहे हैं कि रन्स बन रहे हैं। अभी तक स्ट्रेट नहीं खेला है, वी पर नहीं खेला है।
0: बट देन दैट बॉल वाज एन आर्म बॉल, बट देन गोइंग बैक इनटू द क्रीज एंड कट्स इट ब्रूटली थ्रू द बैकवर्ड पॉइंट रीजन। हियर इज मोलिनो, नेक्स्ट वन, दिस टाइम शी स्टेप्स एंड प्लेस इट अक्रॉस द लाइन। दैट बॉल शो गोइंग टू द स्क्वायर लेग फेंस। फोर रन्स।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: कप्तान का जबरदस्त इस्तकबाल किया, लगातार दो गेंदों पर दो चौके। रफ्तार बहुत नहीं है, 78 के आसपास, और उसका जितना इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़िया शॉट खेला ऑन साइड पर, लगातार दूसरा चौका।
0: मैथ्यूज इज हाई स्कोर दिस वर्ल्ड कप हैज बीन।